0: को फाड़ कर खारिज होना शुरू कर देता है। लावे में मौजूद गैसें आमतौर पर आबी बुखारात, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जैसे अनासर का अमीजा होती हैं। जैसे जैसे लावा सतह जमीन की तरफ उभरता जाता है, दबाव के बायस सयाल शक्ल इख्तियार करने वाली ये गैसें भी ऊपर की तरफ हरकत करती रहती हैं। सतह जमीन के करीब आने पर दबाव में कमी आने के नतीजे में ये गैसें लावे से अलग होकर आजाद शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। गैसों की महलूल से गैसों में तब्दीली और लावे से अलहदगी शदीद धमाके के साथ लावे को सतह जमीन पर निकालने और दूर दूर तक फैलाने का सबब बनती है। आतशफशानी धमाकों की शिद्दत जमीनी परतों की चट्टानों को कई किलोमीटर ऊपर की तरफ धकेल कर पहाड़ बनाने का भी सबब बनती है। ये आतशफशानी पहाड़ मसामदार चट्टानों, ठंडा होने वाले लावे और दीगर मुतद्दद आतशफशानी मादों से मिलकर बनते हैं। तुर्की के नमरूद, एर्जियस और सुभान आतशफशानी पहाड़, इटली के एतिना और वेसो पहाड़, जापान का फ्यूजी पहाड़ और इंडोनेशिया का तंबूरा पहाड़ ऐसे ही आतशफशानी पहाड़ों के मिसालें हैं जो आतशफशानी धमाकों की वजह से बने हैं। दुनिया का बुलंद तरीन आतशफशानी पहाड़ 4169 मीटर बुलंदी के साथ अमरीका के जजीरे हवाई में वाक़ माउना लोवा पहाड़ है। सामिन, धमाके के नतीजे में आतशफशानी मवाद माहौल में फैल जाता है। इस मवाद में राख और लावे के साथ साथ बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े और आतशफशानी राख और गैसों के आमीजे पर मुश्तमिल पायरोक्लास्टिक मादा शामिल होता है। आतशफशानी धमाके की शिद्दत का इन्हसार लावे की सियालियत, गैसों की मकदार और आतशफशानी धाने की अमूमी साख्त पर होता है। आतशफशानी धमाके अर्जियाती मराहल का एक कुदरती नतीजा हैं और अपने इतराफ के कुदरती और इंसानी माहौल को शिद्दत से मुतासिर करते हैं। सामिन, जब से जमीन बनी है ये आतशफशानी धमाके जारी हैं, लेकिन जमीन की तश्कील के इब्तदाई दौर में ये धमाके ज्यादा तवातर और ज्यादा शिद्दत से होते थे। उस दौर के आतशफशानी धमाकों ने हमारे सैारे को वो शक्ल और माहौल अता किया जिसमें आज ये दिखाई देता है। मिसाल के तौर पर जमीनी वजूद के इब्तदाई दौर के आतशफशानी धमाकों ने जमीन के माहौल में गैसों की मकदार और आबी बुखारात की तश्कील में अहम किरदार अदा किया। सामिन, इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होता है। अपनी मेज़बान मिसबा शाहीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।
1: क्योंकि

अस्सलाम वालेकुम सामिन, हम सदाए तुर्किया से मुखातिब हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 30 मई प्रोस हफ्ता है, इस वक्त अंकरा के मकाम वक्त के मुताबिक दोपहर के 3, पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक शाम के 5, भारत के वक्त के मुताबिक शाम के 5:30 और बांग्लादेश के वक्त के मुताबिक शाम के 6 बजे हैं। सामने पाली नशरियात को शॉर्ट वेव 16 मीटर बैंड 17,580 किलो हर्ट्ज के अलावा तुर्किया 384 समेत हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं। आज हमारे प्रोग्राम में अलल तरतीब खबरें से सवार प्रोग्राम अनातोली के शाहकार आसमानी कहानियां और फीचर पेश किए जाएंगे। हमारा प्रोग्राम इस पे मामूल 1 घंटे तक जारी रहेगा। आज आपके मेजबान हैं इमरान ओपन।

भाई सामिन, पहले आज की खास खबर का खुलासा समाप्त फरमाइए। तुर्किया ने कार्गो बहरे जहाज पर ड्रोन हमले के बाद बहर अस्वत में कशीदगी के बारे में एक इंतबाह जारी किया है। यानी कि हुकूमतों की मन मर्जी के ताबे होने का खदशे से मुहताज यूरोपीय यूनियन अमरीकी डिजिटल कंपनियों और चीनी चिप्स को छोड़कर यूरोपीय मुतबादल की तरफ जाने के लिए दूरस इकदाम की तैयारी कर रही है। रूसी जनूबी इलाकों रोस्तोव और क्रासनोव दार के इलाकों हुकाम ने हफ्ते को जरूर इतला दी कि यूक्रेन ड्रोन्स ने कल शब रूसी बंदरगाह तागनरोक में एक टैंकर को निशाना बनाया और रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने अमरीकी साजिश में होने बातचीत के दौरान जो भी लबनान से इसराइली हमलावर फौज के इनखला के लबनानी मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है। अब खबरें तफसील के साथ। तुर्किया ने कार्गो जहाज पर ड्रोन हमले के बाद बहरे अस्वत में कशीदगी के बारे में इंतबाह जारी किया है। जमहूरिया तुर्किया की वजारत खारजा ने कहा है कि अंकरा बहरे अस्वत में दुश्मनी में इजाफे तुर्किया पर मुमकिन मनफी असरात से पैदा होने खतरात और इनसे मुतल्लक तमाम खरीकों को अपनी तश्वीशनाक हालत से आगाह करता रहता है। अंकरा के बयान यूक्रेन की बंदरगाह ओडिशा से खुश कार्गो लेकर तुर्किया जाने वाले तुर्क मालबरदार बहरी जहाज पर बहरे अस्वत में ड्रोन हमले के बाद आया। वजारत ने इकदाम के खिलाफ अपने इंतबाह का इहादा किया जिससे तनाजम बेकाबू इजाफा हो सकता है। तमाम अफ्रीकन से तहमुल से काम लेने की अपील की है। तुर्किया ने बहरे अस्वत में सिविल जहाजों के तहफ़ के लिए मुजाकरात के जरिए तनाजे के खात्मे के लिए अपने मुतालबात का इहादा भी किया। गैर मुल्की हुकूमतों की मन मर्जी के ताबे होने के हदशे से मुख्तात यूरोपीय यूनियन अमरीकी डिजिटल फर्मों चीनी चिप्स को छोड़कर यूरोपीय मुतबादात की तरफ जाने के लिए दूरस इकदाम की तैयारी में है। यूरोपियन का तकनीकी खुद मुख्तारी पैकेज प्रोसेस की जान से गैर मुल्की कंपनियों पर इन्हसार कम करने मुकामी सन को फरोग देने के लिए किए जाने वाले इकदाम में से एक है, मगर इसके बायस ट्रांस अटलांटिक कशीदगी के एक नए महाज खुलने का खतरा भी मौजूद है। एएफपी के मुताबिक मुसवदा हिकमत अमली दस्तावेज में कहा गया है कि यह मुजवजा पैकेज जिसमें चिप्स क्लाउड कंप्यूटिंग और मसनू जहानत के हवाले से नए ख्वाहिश शामिल हैं बुध के रोज पेश किया जाएगा और ये यूरोपियन की जियो इकोनॉमिक ताकत के आलमी मुकाबले में अपनी जगह वापस हासिल करने की कोशिश का एक हिस्सा है। खास तौर पर तशवीश इस बात की है कि यूरोप अमरीकी क्लाउड फ्राहम करदगान पर कितना इन्हसार करता है जो यूरोप की मार्केट का तकरीबन 70% है। जब से सदर डोनाल्ड ट्रंप गुज़िश्ते साल व्हाइट हाउस वापस आए हैं यूरोपीय खदशात बढ़ चुके हैं। अगर कशीदगी अरूज पर पहुंची तो अमरीकी मेन स्विच के जरिए हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बंद किया जा सकता है। यूरोपीय अहदेदार प्रयास अपने हदफ का नाम अमरीका नहीं लेते मगर अमरीकी टेक्नोलॉजी क्लाउड कंप्यूटिंग से लेकर सोशल मीडिया ई कॉमर्स तक हर जगह हावी है। यूरोपीय मुकाबला जातीय अमूर की सर्द

बिजली के शोबे में मुश्तरका मियार दुनिया 230 वोल्ट की तरफ आ रही है। दुनिया भर में बिजली के ग्रिड वोल्टेज को 230 वोल्ट पर लाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। इसके बावजूद अगर तुर्की के शहरी बर आजम अमरीका जाएं तो इन्हें 110 वोल्ट और अगर सऊदी अरब जैसे ममालिक का सफर करें तो मुख्तलिफ किस्म के प्लग और साकट साथ रखना पड़ता है। इस फर्क की बुनियाद भी दरअसल टेस्ला और एडिसन के इख्तलाफात तक जा पहुंचती है। इस मौजू पर और बेचरेकली की TRT खबर के लिए मुहर्रा तहरीर पेश खिदमत है। मुख्तलिफ ममालिक में बिजली के ग्रिड वोल्टेज और प्लग की इकसाम मुख्तलिफ होने की वजह से बैरून मुल्क सफर से पहले मुतल्लिका मुल्क के वोल्टेज और प्लग सिस्टम के बारे में मालूमात हासिल करना जरूरी है। दुनिया में शहरी बिजली के निज़ाम के लिए मुख्तलिफ वोल्ट और हर्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं।